यह आकाशवाणी है, हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। सवेरे के 5:56 और 44 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का कथन है, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। भक्ति संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 232। संगीत सरिता में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंटारा। आज सुनिएगा 10वीं कड़ी, प्रस्तुति मनीषा जैन की, सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा संगीतकार राहुल देव बर्मन पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत होगी गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है उन दिनों की बात है, लेखक और वचन स्वर अरुण शेखर का।

दिन में 11 बजे चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो। मैटिनी शो के अंतर्गत चित्र भारती प्रसारित की जाएगी। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक कटीला रास्ता, इसका पहला भाग। मूल तमिल लेखक नित्यमूर्ति, हिंदी अनुवादक ए शौर्य राजन, निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक। पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज शाम 4 बजे। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत वायलिन का विहंगम संसार, 10वीं कड़ी। जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनवाई जाएगी शाम 7 बजे। 7:45 पर जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा, वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई की। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार आर डी बर्मन पर केंद्रित। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11 बजे चित्रपट संगीत और मैटिनी शो। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी,
1: वायोलिन का विहंगम संसार। श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में हम स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का और जाने माने वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित जी, आज इस अंतिम कड़ी में आपके गुरुजी श्रद्धेय पंडित राम नारायण जी के बारे में बात करेंगे।
2: बिल्कुल।
1: और चर्चा करेंगे राग भैरवी की भी।
2: जयंत जी, आपको बताना चाहता हूँ कि भैरवी कई शेड्स में मेरे गुरुजी ने बजाई है।
1: जी जी।
2: उसके विविध रूपों का प्रकटीकरण उनके वाद्य में हुआ।
1: हाँ।
2: उनका वाद्य तो आप जानते ही, सारंगी है, और सारंगी गज के वाद्यों में मदर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: मतलब वायलिन, चेलो, ये सब गज के वाद्य हैं, इसराज वगैरह। बट सारंगी इज ऑन टॉप ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट।
1: जी।
2: और पंडित राम नारायण के बारे में मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे कि चूंकि मैं उनका शिष्य हूँ इसलिए उनको टॉप पे रख रहा हूँ, लेकिन दुनिया उनको टॉप मानती है। तो उन्होंने भैरवी बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग शेड्स में बजाई है, लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूँ उनकी भैरवी से पहले एक और वाक्य का, कि जो श्रोताओं को भी शायद उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करेगा। वो वाक्य ये है कि पंडित जी जब फिल्मों में बजाते थे
1: जी,
2: तो वो फिल्म थी जो दो हंसों का जोड़ा, गंगा जमुना, उस फिल्म की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चल रहा था। तो नौशाद साहब को लगा कि ये दो हंसों का जोड़ा उन्होंने भैरवी में बनाई
1: जी,
2: ये गीत।
1: हाँ जी।
2: तो ये किसका लिखा हुआ गीत है?
1: शकील बदायूनी साहब का।
2: अच्छा, देखिए, एक से एक उम्दा लेखक थे उस समय, एक से एक उम्दा संगीतज्ञ संगीतकार थे
1: जी,
2: और उनके साथ जो टीम बनती थी उसमें क्या क्या लोगों ने बजाया। पंडित राम नारायण, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, और भी पहले अली अकबर खान साहब वगैरह, उन्होंने भी बजाया फिल्मों में
1: जी,
2: पंडित रविशंकर ने भी बजाया। तो क्या कैटेगरी के लोग थे उस समय जिन्होंने फिल्मों में कंट्रीब्यूट किया म्यूज़िक, और इस वजह से फिल्म म्यूज़िक जो है बहुत रिच हुआ, उसमें बड़ी संपन्नता आई।
1: जी हाँ जी।
2: एक जिक्र करना चाहता हूँ मैं कि किस तरह से पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर अपने उस्ताद संगीतज्ञों का उपयोग करते थे।
1: जी।
2: मेरे गुरुजी ने बताया कि ये दो अंशों का जोड़ा जो फिल्म गंगा जमुना का जो गीत है, हाँ, उन्होंने नौशाद साहब ने बनाया। तो गुरुजी को कहा कि आप आ जाइए, ये गीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। गुरुजी अपनी सारंगी लेके पहुँचे और उन नौशाद साहब के घर पे पहुँचे तो उन्होंने गीत सुनाया और उन्होंने कहा, पंडित जी इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ सारंगी के पीसेस रिकॉर्ड हो जाएं।
1: हाँ।
2: तो गुरुजी ने कहा कि आप बताइए मैं क्या बजाऊँ, नोटेशन बता दीजिए।
1: जी।
2: तो देखिए, बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। नौशाद साहब ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, सारंगी के आप विद्वान हैं और भैरवी का गाना है, लता जी ने गाया है, और अब इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी ने बैठ के कुछ घंटे भर में वो तीन चार जो भी पीसेस हैं बनाए, एक से एक उम्दा अद्भुत पीसेस हैं वो,
1: बेशक,
2: और रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड हुए। देखिए क्या शऊर था लोगों का, म्यूज़िक डायरेक्टर्स का क्या स्टेटस था। हाँ। उस ज़माने में कि वो उस व्यक्ति को पहचानते थे कि ये क्या काबिलियत रखते हैं, आज के मामले में ऐसा संभव नहीं है। वो ज़माने में गुलाम अली खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, आमिर खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, डीवी पलुस्कर साहब ने कंट्रीब्यूट किया,
1: जी, जी।
2: किन किन लोगों ने फिल्म म्यूज़िक में हिस्सा लिया, वो लुप्त हो गया, पूरी परंपरा लुप्त हो गई। और ये जो गीत आज जब भी बजता है दो अंशों का जोड़ा, तो बरबस ही कोई भी व्यक्ति पानी की दुकान पे हो, चाय की दुकान में हो, बाजार में हो, खड़ा खड़ा जब तक पूरा नहीं सुन लेता तब तक आगे नहीं हिलता। तो ये फिल्म संगीत का कैटेगरी और एक स्टेटस था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो स्टेटस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स के भी थे। नौशाद साहब गुरुजी को छोड़ने आए कार तक और गेट खोल के उनको कार में बिठाया, और ये होता नहीं आजकल। तो ये संपन्नता जो संगीत की है वो इस पीढ़ी के साथ लगभग चली गई, जिसका मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, और सब हम सब लोग उसको मिस करेंगे। मेरा कहना है कि इस गीत के अलावा गुरुजी का एक रिकॉर्ड अगर आप भिरवी का लग सके
1: जी
2: तो श्रोताओं को ज़रूर सुना दीजिए।
1: अवश्य।

0: पंडित राम नारायण की बजाई सारंगी पर ये थी राग भैरवी की झलक। और अब राग भैरवी पर आधारित पंडित जी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वही गाना, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो जी।
1: वाह वाह।
0: फिल्म का नाम है गंगा जमुना।
1: बिल्कुल।

0: भैरवी राग पर आधारित फिल्म गंगा जमुना का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार ये श्रृंखला आज यहाँ समाप्त हो रही है। हम विविध भारती परिवार की ओर से, सभी संगीत प्रेमी सुनने वालों की ओर से वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का और श्रोताओं का, जिन्होंने हमारे साथ रह के ये पूरी श्रृंखला सुनी, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस एल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की। श्रोताओं, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक

वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने बोले बिस्तरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और 27 जून का ये दिन बहुत ही खास दिन होता है संगीत के दीवानों के लिए, एक संगीतकार की याद का दिन। 1939 था वो साल जब भारत अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल, लेकिन आगे चलकर वो पुकारने के नाम से कहलाया पंचम और उसके बाद फिल्म संगीत का एक अनमोल सितारा बन गया।

साल 1961 था। महमूद ने एक फिल्म बनाई छोटे नवाब, और इस फिल्म के जरिए आए म्यूजिक की दुनिया के छोटे नवाब यानी राहुल देव बर्मन। बाकायदा डेब्यू हुआ और लता मंगेशकर के साथ हुआ। शैलेंद्र के बोलते घर आजा, घिर आए बदरा सांवरिया। और जरा सोचिए कि एक ऐसा आगाज हुआ जिसकी प्रोग्रेशन का अंदाजा नहीं था, यानी ये यात्रा अपने उन्नत रास्तों पर पहुंचकर कहां चली जाएगी ये लोगों को अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआती संगीत था। आर डी बर्मन ने एक एक कदम आगे बढ़ाए। उनके कुछ शुरुआती गाने हैं आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। फिल्म का नाम है भूत बंगला, फिर से लता मंगेशकर की आवाज है, इस बार बोल हसरत जयपुरी के।

1965 में आई फिल्म भूत बंगला का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे आर डी बर्मन की तर्ज थी। हसरत जयपुरी आर डी बर्मन अनयूजुअल पेयर, दोनों ने संभवतः यही एक फिल्म एक साथ की थी। और आपको बता दें कि भूत बंगला महमूद के निर्देशन वाली फिल्म थी और बहुत ही अनमोल फिल्म और बहुत ही अनयूजुअल अलग तरह का विलक्षण शानदार संगीत है। एक एक गाना अपने आप में कमाल। पंचम पर केंद्रित है आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। और अब तीसरा कौन फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत। संभवतः यहां से आनंद बख्शी के साथ राहुल देव बर्मन की एक यात्रा शुरू होती है और उसके बाद ये यात्रा आने वाले कई दशकों तक चलती है। और आते हैं कुछ बेमिसाल गाने।

तीसरा कौन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का था। 1965 में ये फिल्म आई थी। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में कुछ बातें पंचम की और अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: प्यारा।
1: फिर कब मिलूंगी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में था। कार्यक्रम की अगली पेशकश है ये, आवाज मोहम्मद रफी की, साथ में मन्ना डे, आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम चंदन का पलना।

जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, ये गीत आपने सुना। और ये आज के बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम का आखिरी गाना था। आपको बता दें कि बहारों के सपने फिल्म का ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। अब आज का बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना फिल्म का नाम यादों की बारात, किशोर कुमार और आशा भोसले, मजरूह सुल्तानपुरी, आर डी बर्मन।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गाना, इनका नाम है कालिया।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी।

0: ध्वनि तरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं और ये कार्यक्रम है हम हेरा ही प्यार की।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: क्या?
1: अरे बाबा मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

मनोरंजन फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ था। आर डी बर्मन की तर्ज थी, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी। इसी के साथ आज का हमें रही प्यार के कार्यक्रम अब खत्म हुआ। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
5: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का चेहरा भी अपने आसपास के वातावरण को आनंद, स्नेह और सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने सुंदरता, अपने मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

माँ अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं। उनके निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सुंदरता का वास्तविक निवास मन में होता है। यदि मन सुंदर है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई ही देता है।

लोग अक्सर बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सुंदर चेहरा वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का प्रकाश फैलाए। जिस चेहरे को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिले, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा मिले और किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन महसूस हो, वही चेहरा लोगों की नज़र में सुंदर होता है। लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व वाला चेहरा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चांद की चांदनी कुछ घंटों के लिए संसार को रोशन करती है, जबकि प्रेम, करुणा, विनम्रता और सदाचार से आलोकित चेहरा जीवन भर लोगों के मन में उजाला फैलाता है। इसलिए सच्ची सुंदरता चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता में निहित है। ऐसा चेहरा न केवल खूबसूरत होता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। दिल को

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
5: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
6: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
5: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
6: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
7: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
8: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

ये सुनी चित्रलोक, सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सलाम कर रहे हैं हम आरडी बर्मन को। वो संगीतकार जिसने हिंदी फिल्म संगीत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।

ये उन गानों की झलक है जो पंचम ने खुद गाए। ऐसे गानों का अपना ही एक टशन है।

पुकार फिल्म का गीत आपने सुना गुलशन बावरा के बोल थे। और अब एक बार फिर गुलशन बावरा के बोल, फिल्म का नाम सनम तेरी कसम।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के,
1: हम हैं राही प्यार के।

0: कुछ न बोलिए।
1: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।
1: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों को। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.3 MHz पर। श्रोताओं, सवेरे के 9 बजने को हैं। कुछ पलों में आज हिंदी में समाचार सुनेंगे। इन समाचारों को हम जयपुर के अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: कुछ ही क्षणों में ठीक 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वे रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। करौली जिले में भी केंद्र और राज्य सरकार की एमएसएमई क्षेत्र की योजनाएं आम जन के सपनों को पूरा कर रही हैं। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
4: एमएसएमई योजनाएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र करौली के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर जिले के हिंडौन, करौली और मासलपुर क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बालोतरा में होने वाली मुख्य सभा स्थल पर पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में तकनीकी तैयारियां भी समय से पूरी करने को कहा है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस नए टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
5: पूरी जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। पिछले वर्षों से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके चलते हुए हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ने लगे। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
3: प्रधानमंत्री आज से सेशेल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में गांवों के समग्र विकास, प्रमुख ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा भी होगी। सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कल उदयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती तथा मशरूम उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। श्री गोयल ने उर्वरकों के पारदर्शी और वैज्ञानिक वितरण के लिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स फ्रेमवर्क को उदयपुर संभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। उन्होंने राजकीय कृषि महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को आधुनिक तकनीक से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मशरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। जयपुर में मातृभूमि अभियान के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में वाटर रिचार्ज संरचनाएं बनाना अब अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल रीको के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्हें अधिकारियों को इन संरचनाओं की ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग भी करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में 4-4 वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के शहीद और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर लिया गया है। स्मारक की त्रिआयामी दीवार पर भी उनका नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जवानों में नाम में पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं, जिनमें सार्जेंट सुरेंद्र मोगा वायुसेना के और राजस्थान से एकमात्र शहीद थे। सार्जेंट मोगा को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जा चुका है और वायु वायुसेना ने नई दिल्ली में अपनी एक विंग का नाम सुरेंद्र हॉल रखा है। इस सम्मान पर शहीद के पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र ने गर्व व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम एफएम रेडियो पिंक सिटी।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदी। दिस इज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। मैं हूं तन्मय, आपके साथ लेकर दिस ब्यूटीफुल ब्लिसफुल मॉर्निंग ऑन योन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: हाथ है कुछ तो बात है।
1: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जयपुराइट्स, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे तन्मय, लाइव ऑन लवली मॉर्निंग चिट चैट।
2: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: तो आज सुबह सुबह जब मैं स्टूडियो आ रहा था ना, तो एक गीत में मैंने कमाल की लाइन सुनी, कुछ ना कुछ करो और जिंदगी में कोई ना कोई रंग भरो। एंड ट्रस्ट मी, ये सीधे दिल पर जाके लगी। हम सब की लाइफ में ना एक फिक्स पैटर्न बन गया है, मंडे से फ्राइडे तक वही 9 to 5 वाली घिसी पिटी रूटीन। वीकेंड पे थोड़ा सा नेटफ्लिक्स हो जाता है और संडे रात को फिर मंडे ब्लूज का वही रोना धोना। जब तक हम खुद अपनी लाइफ के पैटर्न नहीं बदलेंगे, जब तक उसके पेंटर खुद नहीं बनेंगे, तब तक इसमें से नेटफ्लिक्स के कलर्स ही रहेंगे और नए कलर्स हम भर नहीं पाएंगे। रंग भरने का मतलब ये नहीं कि आज ही जॉब छोड़ो और झोला उठा के हिमालय पे निकल जाओ। ना भाई ना, EMI भी भरनी है, लेकिन रंग भरने का मतलब है डू समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा करो जो आपने कभी पहले ना किया हो। वो गिटार जो कोने में धूल खा रहा हो उसे उठाओ, जो गलत ट्यून सी बजाओ पर बजाओ ज़रूर। किचन में जाकर कभी चाय के अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल कुकिंग भी कर लो, भले ही वो मैगी पास्ता का फ्यूजन जैसा कोई ब्लंडर ही क्यों ना हो, मगर ट्राई तो करो। या फिर बस कोई पुराने दोस्त को अचानक कॉल घुमाओ और बोलो, भाई यार तेरी याद आ रही है। लुक, द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, जब तक आप कुछ नया करोगे नहीं, तब तक लाइफ में एक्सपेरिमेंट होंगे नहीं और नए कलर्स आएंगे नहीं। सो स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है बॉस, जो भी है आज है, अभी है। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज के दिन की एक फ्रेश शुरुआत करते हैं, बोरियत को बोलते हैं बाय बाय और लाइफ में घोलते हैं थोड़े क्रेजी कलर्स। आप सुन रहे हैं लवली मॉर्निंग चिट चैट तन्मय के साथ। चलिए आपको सुनाता हूँ एक ऐसा गाना जो आपके मूड को जोश से सारे रंगों से भर देगा। स्टे ट्यून, कीप स्माइलिंग और याद रखना, कुछ ना कुछ करते जरूर रहना है और जिंदगी में कोई ना कोई रंग भरते जरूर रहना है। बैक आफ्टर दीज सुपर ट्रैक्स रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: लेकिन रेडियो पिंक सिटी के दिल में आपके लिए हमेशा बहुत सारी जगह बनी रहेगी। रेडियो पिंक सिटी 90.3 एफएम, कुछ तो खास है कुछ तो बात है। लवली मॉर्निंग चिट चैट,
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है कुछ तो बात है।
0: जी हाँ दोस्तों, बात अगर हम करें मौसम की, टेम्परेचर की, तो आपको बता दें मौसम ने ले ली है करवट और राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटीज़ जोरों पर हैं। कल यानी शुक्रवार को भी राज्य के कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश हुई, जिससे मौसम तो सुहाना हुआ लेकिन बॉस कुछ जगहों पर वाटर लॉगिंग यानी पानी भरने की समस्या भी आई है। फिलहाल अगर बात करें आज के टेम्परेचर की, तो जानते हैं ये टेम्परेचर आज का अपडेट पारा सिंह से।
2: निकला वो गड्डी लेके,
3: पारा सिंह की गड्डी कहाँ होगी फास्ट और कहाँ होगी स्लो। टेम्परेचर अपडेट, टेम्परेचर अपडेट ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है कुछ तो बात है।
0: तो जयपुर का टेम्परेचर अपडेट कहता है कि इस वक्त यहाँ जयपुर में 33 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है, जो मैक्सिमम 38 जा सकता है और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर गिर सकता है। एयर क्वालिटी भी इस वक्त मॉडरेट है, अराउंड 96 है AQI, तो एयर क्वालिटी भी इस वक्त मॉडरेट ही मानी जा सकती है। दोस्तों अगर बात करें पिछले 24 घंटों की, तो श्रीगंगानगर, उदयपुर, अजमेर और कोटा समेत पूरे 16 जिलों में झमाझम बारिश का रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि इससे पहले राज्य के मोस्टली एरियाज में मौसम काफ़ी ड्राई था और तेज धूप की वजह से टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी भी दिखाई दी गई है। स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करें, तो वहाँ पर पारा 41 से करीब 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था और सबसे ज़्यादा गर्मी का जो टॉर्चर झेलना पड़ा वो श्रीगंगानगर को, जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 42.1 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच गया था। लेकिन कल दोपहर के बाद से ही उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में घने बादलों ने डेरा डाल दिया था और जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। और अगर चलो ये बात करते हैं राजधानी जयपुर की, तो जयपुर में कल दिन भर मौसम ड्राई रहा, आसमान में हल्के बादल थे और भाई उमस यानी ह्यूमिडिटी पसीने छुड़ा दिए थे उसने। कल जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर 38.7 डिग्री सेल्सियस रहा था, पर थैंक गॉड शाम होते होते ठंडी हवाएं चली और मौसम थोड़ा प्लेजेंट हो गया। अब आते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट पर। तो मौसम विभाग यानी IMT ने आज शनिवार के लिए राज्य के 27 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, वहीं वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राजस्थान के नॉर्थ, ईस्टर्न और सदर्न हिस्सों में ये प्री मानसून एक्टिविटीज़ जो हैं इसकी इसी तरह से जारी रहने वाली हैं। तो भाई वीकेंड का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो सोच समझ कर बनाइएगा, घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट के साथ ही निकलिएगा और रेडियो पिंक सिटी ही सुनते रहिएगा। रेडियो पिंक सिटी 90.3 FM सुनते हैं एक रिफ्रेशिंग सा गाना, आप बने रहिए मेरे यानी तन्मय के साथ ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: रेडियो पिंक सिटी 90.3 एफएम सुन रहे हैं आप खणा खम्मा घणी राजस्थान। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट तन्मय और ये है लवली मॉर्निंग चिट चैट। और आज की लवली मॉर्निंग चिट चैट होने वाली है थोड़ी और स्टाइलिश।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है कुछ तो बात है।
0: तो दोस्तों बात यह है कि हमारे राजस्थान की बेटियां जब स्टेज पर उतरती हैं ना तो बस छा जाती हैं। और कुछ ऐसा ही मैजिक देखने को मिला है मिस राजस्थान 2026 का जो टैलेंट राउंड हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो टैलेंट राउंड है वो देखकर ये साफ हो गया कि मिस राजस्थान सिर्फ ग्लैमर का मंच नहीं बल्कि ये सेलिब्रेशन है टैलेंट का, कॉन्फिडेंस का और स्ट्रांग पर्सनैलिटी का। आपको बता दें कि ये जो देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट के लिए इस साल पूरे राजस्थान से करीब 6,500 गर्ल्स ने अप्लाई किया, लेकिन बड़ी टक्कर के बाद चुनकर आए टॉप 28 फाइनलिस्ट जिन्होंने टैलेंट राउंड में जो आग लगाई है ना वो जो जजेस थे उनसे लेकर उसके ऑडियंस तक उसके व्यूअर्स तक सब हर कोई देखता ही रह गया। किसी ने क्लासिकल और वेस्टर्न डांस के करके स्टेज पर आग लगा दी तो किसी ने सुरीली आवाज़ से समा बांध दिया, कुछ मॉडल्स ने एक्टिंग के जरिए इमोशंस को लाइव कर दिया तो किसी ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स और क्रिएटिव आर्ट का करके सबका दिल जीत लिया। और हाँ दोस्तों, माहौल तब और भी खूबसूरत हो गया जब वहाँ मौजूद पेरेंट्स की आँखों में अपनी बेटियों को स्टेज पर रॉक करते हुए देख उनके गर्व से उनके आंसू आ गए।
2: जलवा जलवा

टाइटल कॉम्पिटिशन्स का ये दौर है वो अलग अलग वेन्यूज़ पे जारी रहेगा और फाइनली 4 जुलाई को ये होगा ग्रैंड फिनाले, जहां जयपुर की टॉप डिज़ाइनर्स का रॉयल कलेक्शन और पारंपरिक राजस्थानी ज्वेलरी का शो भी आकर्षण बढ़ाएगा। तो ऑल द बेस्ट हमारे राजस्थान की इन खूबसूरत और टैलेंटेड शेरनियों को। आप बने रहिए मेरे यानी तन्मय के साथ ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। एक ग्लैमरस वाइब्स के साथ सुनते हैं कड़क बॉलीवुड ट्रैक।

रेडियो पिंक 93 एफएम सुन रहे हैं आप दोस्तों, और मैं हूं तन्मय आपके साथ। दोस्तों, आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे बड़ा और सुरीला और सबसे रॉकिंग दिन है, क्योंकि आज जन्मदिन है उस जादूगर का जिसने हमारी जिंदगी को संगीत के अनोखे रंगों से भर दिया।

जी हाँ दोस्तों, पंचम दा एक ऐसा नाम जिन्होंने सिर्फ संगीत ही नहीं बनाया बल्कि संगीत का पूरा जमाना ही बदल दिया। जब 60 और 70 के दशक में लोग सिर्फ धीमे और पारंपरिक गाने सुनते थे, तब इस इंसान ने बॉलीवुड में रॉक, पॉप, जैज और लैटिनो बीट्स का एक तड़का लगाया और पूरी इंडस्ट्री झूम उठी। वैसे क्या आप जानते हैं कि इन्हें पंचम नाम किसने दिया था? कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तब वो रोते बहुत थे और संगीत के पांचवें सुर यानी पंचम की धुनी निकालते थे। तो मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने जब ये सुना तो उनका नाम रख दिया पंचम। और आगे चलकर इसी पंचम ने संगीत की दुनिया पर ऐसा राज किया कि आज भी उनके गाने हमारे प्लेलिस्ट की शान है। दोस्तों, पंचम दा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी जानते हैं? उनकी क्रिएटिविटी। वो सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मोहताज नहीं थे, उन्होंने गानों में ऐसे ऐसे साउंड्स इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। चुरा लिया है इस गाने में ग्लास पर चम्मच मारने की आवाज़। महबूबा महबूबा जो आप इस वक्त सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, उसमें खाली बोतलों को फूंक कर निकाला गया है साउंड। और फिर पड़ोसन के गानों में उन्होंने कंघी कॉम्ब को रगड़ कर म्यूजिक बना दिया। इसे कहते हैं एक जीनियस। उन्होंने किशोरदा, आशाताई और लता दीदी के साथ मिलकर हमें ऐसे एवरग्रीन नगमे दिए जो हर जनरेशन के दिल के करीब हैं। चाहे प्यार का इजहार करना हो तो ओ मेरे दिल के चैन, दोस्तों के संग घूमना हो तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, या फिर टूटे दिल का सहारा मुसाफिर हूँ यारो। दोस्तों, पंचम दा के पास हर मूड का इलाज था। पंचम दा आज हमारे बीच भले ना हो लेकिन अपने संगीत के जरिए वो हमेशा दिल में धड़कते रहेंगे। जो संगीत से प्यार करता है उनके भी, और जो संगीत सुनता है उनके भी। आज उनके जयंती पर पूरा देश उन्हें सलाम करता है। तो चलिए यादों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं पंचम दा की एक जादुई धुन से सजा एक बेहतरीन खूबसूरत नगमा। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM पर।

दोस्तों आज 27 जून है और आज का इतिहास में दर्ज है दिन एक ऐसे महानायक की याद लेकर आता है, वो दिन जिसने भारतीय सेना के शौर्य को पूरी दुनिया में एक नया मुकाम दिया। दोस्तों आज पुण्यतिथि है भारत के पहले फील्ड मार्शल द अल्टीमेट लेजेंड सैम हॉर्मूज़जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ, जिन्हें पूरी दुनिया बड़े प्यार और सम्मान से कहती है सैम बहादुर। सैम बहादुर सिर्फ एक सोल्जर या जनरल नहीं थे, बल्कि ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ करेज एंड लीडरशिप। उनकी रगों में देशभक्ति का वो खून दौड़ता था जिसे देखकर दुश्मन भी थर थर कांपते थे। 1971 का वो युद्ध हो वो आपको याद होगा, सैम बहादुर की बेमिसाल लीडरशिप और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ही नतीजा था कि सिर्फ 13 दिनों में हमने दुश्मनों के सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और दुनिया के नक्शे पर हम अडिग हो गए। दोस्तों सैम बहादुर की पर्सनालिटी में जो स्वैग जो निडरता थी वो आज के हर यूथ के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब 1971 के युद्ध से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि आर यू रेडी फॉर द वॉर, तो सैम बहादुर ने मुस्कुराते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा था आई एम ऑलवेज रेडी। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, ये कुर्सी का नहीं उनके फौलादी इरादों का था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके शरीर में 7 गोलियां लगी थी। जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो वो हंसते हुए बोले कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी थी। मौत सामने खड़े होकर भी ऐसा मजाक करने वाला सच्चा वीर ही मार सकता है। सैम बहादुर का एक कोट आज भी भारतीय सेना के जवान का हौसला बढ़ाता है। उन्होंने कहा था इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग ही इज इदर लाइंग और ही इज ए गोरखा। 27 जून 2008 को इस वीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके आखिरी शब्द थे आई एम ओके। मौत को भी उन्होंने मुस्कुराकर गले लगाया। आज सैम बहादुर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जवान उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कभी झुकना नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी है, अपने देश के गौरव के लिए हमेशा खड़े रहना है। सैम मानेकशॉ के इस जज्बे को, उनके इस अनमैच्ड कॉन्फिडेंस को हम सलाम करते हैं।

0: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131, 132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: दिल की बात सुनने को हर पल तैयार। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, तन मैं है आपके साथ और 10 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट। वक्त है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं मेरे सवालों का जवाब दो।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुनते रहो।
0: तो दोस्तों, आज मेरे सवालों के जवाब दो में हम सवाल करेंगे कुछ खास। जी हाँ दोस्तों, खास सवाल होंगे क्योंकि ये उपलब्धियाँ खास लोगों को प्राप्त होती हैं। और जब आम लोग, आप और हमारे जैसे लोग जब कुछ नया करते हैं, कुछ बेमिसाल करते हैं, तो वो उपलब्धियाँ हासिल करके हम उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने काम से देश का नाम रोशन करता है तो समाज में बदलाव लाता है। कला हो, विज्ञान हो, खेल हो, साहित्य हो या वीरता हो, असाधारण योगदान देता है तब राष्ट्र उन्हें सम्मानित करता है। और यही सम्मान केवल एक मेडल नहीं होते बल्कि पूरे देश की ओर से दिया गया सम्मान होता है, विश्वास होता है और कृतज्ञता होते हैं। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम जानेंगे भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से कई सम्मानों के नाम, उनके अवार्ड्स के नाम, और बात करेंगे और सवाल पूछूंगा मैं आपसे कुछ ऐसे जो उन सम्मानों से जुड़े हैं, उन अवार्ड से जुड़े हैं। आपको देने हैं उनके जवाब। हमारे स्टूडियो लाइंस खुली हैं और स्टूडियो नंबर है 0141 एसटीडी कोड के साथ। आप डायल कीजिएगा 2200800, 0141 एसटीडी कोड के साथ 2200800, और पहुंचा दीजिएगा मेरे सवालों के सही जवाब हम तक। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर पहला सवाल के लिए आप हो जाइए तैयार।
1: बैंग ऑन, यू हैव ट्यून्ड इनटू द राइट फ्रीक्वेंसी, रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।
0: पहला सवाल आपसे करेंगे बेहद ही आसान, और आपको बताना है कि भारत के कौन से वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, वो चार सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको बताने हैं, उन चारों सम्मानों के नाम, उन चारों अवार्ड्स के नाम आपको बताने हैं हमें। आपको डायल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 0141 एसटीडी कोड के साथ 2200800, हमारे स्टूडियो नंबर्स हैं। आपको बताना है भारत के चार सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन से हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर सुनते रहिए और पहुंचा दीजिए सवाल का सही जवाब हम तक। तब तक सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
1: रेडियो पिंक सी 100.3 एफएम सुन रहे हैं तन मैं है आपके साथ और ये शो है मेरे सवालों का जवाब दो, जहां पर मैंने किया था आपसे सवाल कि आपको बताना था कि भारत के चार सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन से हैं। तो इसका सही जवाब है भारत रत्न। भारत रत्न जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। दूसरा था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा पद्म भूषण। पद्म भूषण विशिष्ट और उच्च कोटि की सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। और चौथा है पद्मश्री। पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और हम तक जिन्होंने सही जवाब इसका पहुंचाया है, उनके नाम हैं प्रदीप दुबे जी, प्रकाश जांगिड़ जी, हरीश कुमार जी, ममता लाखोटिया जी, बाबू लक्ष्मीकांत जी, सुनील टेलर जी, सुशीला दत्ता जी और राम सिंह जी, जिन्होंने हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है। और अगला सवाल मैं आपसे करता हूं जो जुड़ा है इसी सवाल से, आपको देना है इसका भी सही जवाब। तो दोस्तों आपको बताना है कि साल 2026 यानी कि इस साल कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं कुछ ही दिन पहले। आपको बताना है कि इस साल कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आपको इस सवाल का सही जवाब पहुंचाना है। हमारे रेडियो स्टेशन के लाइंस, टेलीफोन लाइंस खुली हैं, 0141 एसटीडी कोड है और आपको डायल करना है 2220800 और पहुंचा दीजिए सवाल का सही जवाब हम तक। सवाल है साल 2026 यानी कि इस साल कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आसान सा सवाल है, दीजिए इसका जवाब। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, बसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्यालय नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिमवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: Bang on! You've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
3: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, तन्मय है आपके साथ और शो है मेरे सवालों का जवाब दो, जहां पर हमारे सवाल हैं आज भारत के सम्मानों से जुड़े, जो भारत में आप उपलब्धियां हासिल करने पर उन सम्मानों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो सवाल मैंने आपसे किया था अभी, वो था कि 2026 यानी इस साल कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इसका सही जवाब है 131। जी हाँ दोस्तों, इस साल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। और दोस्तों, इसके अलावा इस सम्मान सूची में 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी और अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज हैं और 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित होने वाली वो ऐसी हस्तियां हैं। और हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है प्रकाश चांगिड़ जी ने, पंकज अरोड़ा जी ने, बाबू लक्ष्मीकांत जी ने, ममता लाखोटिया जी ने और सुशीला दत्ता जी ने हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है। अब आप तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए।
2: सुनते रहो
3: दोस्तों, अगला सवाल है फिल्म से जुड़ा, भारतीय सिनेमा से जुड़ा, और आपको बताना है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ये भारतीय फिल्म उद्योग में आजीवन योगदान देने वाले कलाकारों और फिल्मकारों को प्रदान किया जाता है और आपको बताना है कि वो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। आपको इस सवाल का सही जवाब देना है हमारे स्टूडियो नंबर से 0141 एसटीडी कोड के साथ। आप डायल कीजिएगा 2200800 और पहुंचा दीजिए सवाल का सही जवाब हम तक। सवाल है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, तन्मय है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है मेरे सवालों का जवाब दो, जहां पर पूछ रहा हूं मैं सवाल आपसे भारत के सम्मानों से जुड़े, भारत के जो उच्च सम्मान हैं उनसे जुड़े सवाल हम कर रहे हैं और जवाब आपके हम तक पहुंच रहे हैं हमारी फ़ोन लाइंस के ज़रिए।

0: 100.3 FM सुनते रहो।
1: तो दोस्तों, हमने आपसे सवाल किया था कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान किसे कहते हैं, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो भारतीय फिल्म उद्योग में आजीवन योगदान देने वाले कलाकारों और फिल्मकारों को ये सम्मान दिया जाता है, और इसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो भारतीय सिनेमा के विकास और इसमें उत्कृष्ट जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो देने वाले सिनेमा के जगत के जो हस्तियां हैं उनको ये सम्मान हर साल दिया जाता है। और ये जो सम्मान है, जो पुरस्कार है, भारत सरकार के द्वारा साल 1969 में ये स्थापित किया गया था, और इसका नाम जो है भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं, उन जनक माने जाने वाले ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जो जिन्हें कहते हैं हम प्यार से दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। और हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है, उनके नाम हैं हरीश कुमार जी, राम सिंह जी, बाबू लक्ष्मीकांत जी, पंकज अरोड़ा जी, ममता लाखोटिया जी, प्रकाश जांगिड़ जी, प्रदीप दुबे जी, इंदु शर्मा जी और सुशीला दत्ता जी। इन सभी ने इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है। अब आप लोग तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए।
0: सुनते रहो।
1: अगला सवाल है भारत के वीर से जुड़ा, भारत के जो वीर हैं, जो बॉर्डर पे, जो हवा में, जो जल में, जल थल और वायु तीनों में जो अपनी सैन्य की वीरता दिखाते हैं, उन भारतीय सैनिकों से जुड़ा ये सवाल है। आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार वो कौन सा है। आपको बताना है उस वीरता पुरस्कार का नाम, वो गैलेंट्री अवार्ड का नाम जो भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। और हम तक इसका जवाब पहुंचाने के लिए टेलीफोन लाइंस खुली हैं। 0141 एसटीडी कोड के साथ आप डायल कीजिए 2200800 और पहुंचा दीजिए सवाल का सही जवाब, भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार वो कौन सा है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM पर तन्मय है आपके साथ।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, तन मैं है आपके साथ और शो है मेरे सवालों का जवाब दो, जहां पर आज के सवाल हैं जुड़े भारतीय सर्वोच्च सम्मानों से, जो ऐसे सम्मान जो बहुत ही उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, हमने आपसे सवाल किया था कि भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो इसका सही जवाब है परमवीर चक्र। जी हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र है द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो भारत में दिया जाता है, युद्ध में, युद्ध के दौरान दिखाई गई सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाने वाला ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। और दोस्तों, जो पहला सैन्य सम्मान मिला था उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947-48 के भारत पाक युद्ध में जो अद्वितीय वीरता दिखाई थी, उन्हें मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो दोस्तों, पहला जो सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, वो है परमवीर चक्र। हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है प्रदीप दुबे जी ने, इंदु शर्मा जी ने, प्रकाश जांगिड जी ने, दयानंद जी ने, पंकज अरोड़ा जी ने, हरीश कुमार जी ने, सुशीला दत्ता जी ने और ममता लाखोटिया जी ने हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है, जो था आज के शो का आखिरी सवाल, जिसमें हमने जाना भारत के सर्वोच्च सम्मानों के बारे में, जिनको प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट योगदान की आवश्यकता होती है, और जो उत्कृष्ट योगदान हम तक और जो समाज में नया बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर मेरे सवालों का जवाब दो प्रोग्राम यहीं पूरा होता है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।

प्यार में हो या रेलवे टिकट की कतार में, गुनगुनाना हमारी आदत है। किचन में करछी चलाए या ऑफिस में कंप्यूटर, गुनगुनाना हमारी आदत है। बच्चों के साथ खेलें या बुजुर्गों को सैर पर ले जाएं, गुनगुनाना हमारी आदत है। मैदान से खलिहान तक, सुबह से शाम तक, गुनगुनाना हमारी आदत है। क्योंकि रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जयपुर की सुरीली आदत, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आदत हो चुकी।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, और ये है शायरी से यारी। दोस्तों, वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, मुझको चलने दो।

वो अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बेहद खूबसूरत वाली गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त और इस महफिल का होस्ट, और आप सुन रहे हैं आपका चहेता शो, शायरी से यारी। दोस्तों, आज जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो खिड़की से बाहर सड़कों को देखकर दिल ने एक बात तो कही, जिंदगी भी तो एक सड़क जैसी है, कभी हमवार, कभी पथरीली, कभी मोड़दार। इसी कश्मकश को समेटे हुए आज हम शुरू करते हैं शायरी से यारी, और यारी है आज सफर से, यारी है आज हम सफर से। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मगर इसी कोशिश में अगर कोई हाथ थामने वाला मिल जाए तो सफर का मजा दो गुना हो जाता है। उसी बात पर एक शेर अर्ज है कि सफर लंबा है मगर मंजिल की चाहत किसी है, सफर लंबा है मगर मंजिल की चाहत किसे है, तुम जो साथ हो तो रास्तों से शिकायत किसे है।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, और ये है शायरी से यारी। दोस्तों, आज शायरी से यारी में हमारी यारी है सफर से, यारी है हम सफर से। दोस्तों, जब हम सफर मुकम्मल हो तो मील के पत्थर गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जनाब जब सफर इतना आसान कहाँ होता है। कभी कभी हम सफर तो होता है पर दरमियान दूरियां आ जाती हैं, या फिर कभी कभी हम अकेले ही उस राह पर निकल पड़ते हैं जहां सिर्फ यादों का कारवां साथ होता है। निदा फाजली साहब इस जगह कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर शायरी से यारी, और आप सुन रहे हैं हमारी यारी सफर से।

जी हाँ दोस्तों, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। और इस सफ़र पर अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो बस डायल कीजिए 0141 एसटीडी कोड के साथ 2220800 और पहुंचा दीजिए सफ़र पर, हम सफ़र पर, अपनी बात, अपने जज्बात, अपने एहसास, और बन जाइए सफ़र पर हमारे साथी।

0: दोस्तों हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, जानते हैं कि सफर पर वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: सर शैलेश सामानी बोल रहा हूँ, मालवीय नगर जयपुर से।
0: शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: सर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ।
0: जी स्वागत है आपका।
1: जीवन में है अनेक रंग, जीवन के सफर में साथी चल रहे हैं संग संग, त्योहारों के प्रति है मन में उमंग, इंद्रधनुष में होते हैं सात रंग, सात दिनों से बनता है सप्ताह, जिसमें व्यक्ति करता है अपना कर्म, सिद्धांत है सभी के अपने अपने, जिनका अपना है मर्म, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं उसके द्वारा किए गए कर्म, जीवन के सफर में है उतार चढ़ाव, सुख दुख और लाभ हानि, जीवन की यही है कहानी।
0: क्या बात है, क्या बात है शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए और सफर पर एक खूबसूरत कविता सुनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।

जी हाँ दोस्तों, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। और हमारे साथ चलने के लिए इस सफ़र पर आपको डायल करना है 0141 एसटीडी कोड के साथ 2220800 और पहुंचा दीजिए अपनी बात, अपने जज्बात, अपने एहसास सफ़र पर, अपनी बात हम तक। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब क्या खूब कहते थे कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते

0: दोस्तों, सफ़र और हम सफ़र का हमारा ये सफ़र है जारी। शायरी से है हमारी यारी और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ी हैं।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सर। मैं एक नज़्म साझा करना चाह रही हूँ फरहत एहसास साहब की।
0: क्या बात है, स्वागत है आपका।
1: वो हाँ जी, वो कहते हैं कि एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से चलता हुआ आया हूँ यहाँ, राह में मुझसे जुदा हो गई मेरी सूरत, अपने चेहरे का बस एक धुंधला तस्वीर है मेरी आंखों में, रास्ते में मेरे कदमों के निशान भी होंगे, हो जो मुमकिन तो उन्हीं से मेरी आगाज की तारीख सुनो। तो ये हैं फरहत एहसास साहब, और मुझे मौका देने का बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सफ़र पर। दोस्तों, फराज साहब क्या खूब कहते हैं कि जुदाइयां तो मुकद्दर हैं फिर भी जाने सफ़र, जुदाइयां तो मुकद्दर हैं फिर भी जाने सफ़र, कुछ दूर ज़रा साथ चल के देखते हैं।

0: ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं आप और शायरी सियारी में एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
1: जी नमस्ते, राधे राधे।
0: राधे राधे, नाम बताएं अपना।
1: जी मेरा नाम कैलाश चंद्र कमल है।
0: कैलाश जी, क्या सुनाना चाहेंगे आज आप सफर पर?
1: जी मैं एक छोटी सी सुना।
0: जी
1: अकेले ही अकेले चले हो कहां, कहे जा क्या कहे जाए सिमझना, हो ना जाना जा हो रही अलबेले, हम सफर भी कोई साथ ले, हम सफर भी कोई साथ ले। हम उन्हें याद करते हैं, भुला नहीं पाते हैं
0: जी।
1: वो है कि दूर से हमें याद नहीं सताते हैं, हम ऐसी दुविधा में पड़े हुए अकेले यहाँ रहते हैं, हम उनको हर वक्त दिल से याद किया करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने ये गीत सुनाया हमको कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी मैं विद्यार्थी नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।

पात और तिल थोड़ा संजीदा हो गया था, तो चलिए माहौल में थोड़ी सी मोहब्बत की खुशबू घोलते हैं। जनाब, अच्छा हमसफर सिर्फ वो नहीं होता जो धूप में छांव बन जाए, बल्कि वो होता है जो आपके खामोश सफर को भी एक खूबसूरत नगमा बना दे। साथ तो वो होता है जो शहर की भागती दौड़ती शराफत और ये ट्रैफिक भी अच्छा लगने लगता है। इस बात पर किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं अगर रिश्ता निभाना है, मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं अगर रिश्ता निभाना है, वरना रिश्ता लगाकर भूल जाते हैं, पौधा भी सूख जाता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बनकर मिलें दोनों, कि इस सफर में अब नया मोड़ लाना है, और सफर में नया मोड़ लाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, और आज बात सफर पर।

0: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, बसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलयकुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुल औरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: कुछ खूबसूरत सुरीले पल ओनली फॉर जयपुराइट्स विद रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

दोस्तों बशीर बद्र साहब कहते हैं कि मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। दोस्तों चाहे कोई हमसफ़र आपके साथ हो या आप अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों, खुद से बेहतर हमसफ़र कोई दूसरा नहीं होता। खुद से प्यार कीजिए, इन रास्तों का लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि मंजिलों को एक दिन मिलना तो लाजमी है। असली दास्तां तो ये सफ़र ही है जो हमारी दास्तां लिखता है।

दोस्तों, राहें चाहे कैसी भी हो, अपने हमसफर का हाथ थामे रखिए। और अगर इस सफर में आप अकेले हैं तो खुद से मोहब्बत करना मत।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे थे आप, और वक्त है आपसे विदा लेने का, इस सफर को यहीं पूरा करने का। शायरी सियारी आज यहीं तक। अब मुझे यानी तन्मय को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए, हंसाते रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। यू टेक केयर ऑफ सेल्स, हैव अ नाइस डे।

0: आप सुन रहे थे रेडियो पिंक सिटी। अब 12 बजने को है, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। उसके बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से। आपको जोड़ते हैं जहां आप सुनेंगे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देवबर्मन की आवाज़ों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में अभिलाषा फिल्म के गीत में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज़ में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आगले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आनंदपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969 6 पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान किए। उन्होंने रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए गए। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि लिफ्ट कैनाल परियोजना के तीसरे चरण का पानी अगले 3-4 महीनों में जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि परियोजना का काम लगभग पूरा हो गया है, इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृत 4 अतिरिक्त जलाशयों में से फलसू जलाशय में पानी भरने की शुरुआत होने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के लोकार्पण के साथ ही विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के बाद अब यहां एक साथ 12 विमान खड़े हो सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग को वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के लिए 29,86,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से जारी वार्षिक कार्य रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या अब तक किसी भी एक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या में सबसे अधिक है। वर्ष 2023-24 में आयोग को 20,24,000 आवेदन मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने वर्ष 2024-25 में 72 प्रतियोगी परीक्षाओं और 316 साक्षात्कार आयोजित कर विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए 2,538 युवाओं का चयन किया था। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। विभिन्न जिलों में अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिन के इस अभियान के दौरान पहले दिन बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, वहीं अगले 2 दिन घर घर जाकर पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जाएगी। इसी सिलसिले में आज झुंझुनू और जैसलमेर में जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। झुंझुनू के CMHO डॉ छोटेलाल गुर्जर ने शहीद पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि जिले में अभियान के लिए 1,551 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जैसलमेर में भी गड़ीसर चौराहे से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग कर्मियों और आशा सहयोगियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि सेशेल्स विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हमीनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताज़ा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज के सभी संगी साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज़्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे। और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती ज़रूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारमा छूटता है, साथी, संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते, नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवर चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती हैं कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थीं, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते हैं, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़ी दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियाँ, क्योंकि आमतौर पर सखियाँ तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहाँ पहुँचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा वो किस्सा, क्या है हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफ़र कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफ़र में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तीज रफ्तार से अपना सफ़र तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेज़ी मेडिसिन या घरेलू दवाइयाँ थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक हैं। फिर भी लगातार फ़ोन पर कॉन्टैक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के ज़रिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की ये यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के ज़रिए या एक दूसरे के व्यवहार के ज़रिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन के इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते जमाने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और इसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफर गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफर की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी बारात कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रिश्ते, जहां एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, इसलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कहने कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो संगीत हो राग हो या चित्रपट की कहानी हो, हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में एक एक पंक्ति में एक एक गीत में, आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है, इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल, मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है, जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र यार दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं आज के प्रोग्राम में, बहुत मजा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी कि आज जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजिए, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आपसे जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। ये हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुँचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफ़र की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नज़र आती है लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफ़र की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहाँ आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफ़र की पोस्ट नज़र आ जाएगी और आप वहां कमेंट के ज़रिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहाँ पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मज़ा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतनी बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त ज़रूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियां नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारे एक और साथी कहते कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के ज़माने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगी हम कहते हैं। और आपकी दोस्त के का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज के किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले और मिले तो वो किस्सा क्या है। और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफ़र। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहते हैं कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है, यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में। इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का, कह रहे हैं कि सर्व कर्म का भोग है, यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं, सबके सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है। लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं। समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती हैं, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते कि मैंने आपको भी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे कौर साथी कहते हैं कि जहाँ याराना वो खूबसूरत रिश्ता है जहाँ शब्दों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई, और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज़ में है।

0: धूप तो कभी छा,
1: कभी धूप कभी छाँव। कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त का संगीत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। संगीत किसके आवाज में गीत है, हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं मारिक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है। जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर नयन जीवंत हो तुम, अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है, हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहाँ उसमें जो पंक्तियाँ होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़ी वाला था, वहाँ के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियाँ और दोस्त भी, सुरीला सफ़र के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फ़ोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फ़ोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फ़ोन आना। वही हमारे साथी कह रहे कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उस

लोगों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियां आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने ज़माने की हों जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फ़ोन उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

नमस्कार। आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में। कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं, हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहाँ पुराने क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला। स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला। एक अलग ही तरह का माहौल था उस दिन, सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहाँ मौका मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज़ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे एक साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में, और वहाँ उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहाँ पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ। फिर हम वहाँ से टैक्सी किराए पर लेकर जिणमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए, और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है। भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहाँ पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की। बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त किसी 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई और हमने पुरानी बातें की। तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें यादें ताज़ा की होंगी। तो चलिए एक याद ताज़ा कीजिए इस गीत के साथ और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

पिया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40-45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गाँव के काम से गाँव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो भी होने लगा, उनकी बहस होने लगी तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले एक कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये। और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज में।

0: सचिन देव बर्मन की आवाज में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना। यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें, और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफर जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का चेहरा भी अपने आसपास के वातावरण को आनंद, स्नेह और सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने सुंदरता, अपने मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

माँ अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है, तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं। उनके निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सुंदरता का वास्तविक निवास मन में होता है। यदि मन सुंदर है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई ही देता है।

लोग अक्सर बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सुंदर चेहरा वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का प्रकाश फैलाए। जिस चेहरे को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिले, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा मिले और किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन महसूस हो, वही चेहरा लोगों की नज़र में सुंदर होता है। लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व वाला चेहरा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चांद की चांदनी कुछ घंटों के लिए संसार को रोशन करती है, जबकि प्रेम, करुणा, विनम्रता और सदाचार से आलोकित चेहरा जीवन भर लोगों के मन में उजाला फैलाता है। इसलिए सच्ची सुंदरता चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता में निहित है। ऐसा चेहरा न केवल खूबसूरत होता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। दिल को

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हारमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न

0: क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
2: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
3: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
4: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंती ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: चले। किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील, ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजनी है, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिए, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: सोचा था।
1: मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं, अलग अलग जगहों से एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओहो भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहाँ गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो ये है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है?
3: मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले
3: साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
3: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
3: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
3: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
3: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहें ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जस्ता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ

0: डॉक्टर साहब, 4 दिनों से बुखार लगातार चल रहा है। बहुत बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए, बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी, पैसा नहीं है डॉक्टर जी।
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस ज़ादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गए नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक ही करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट हैं, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ, जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं हैं। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़ कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा, तो ये बात है।
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
4: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ़ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
4: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे, सीना दर्द कर रहा है।

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो।
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो। ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा? दे भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर।
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई? जानम्मा
2: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं, ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: इसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊँ भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
0: वो क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
1: ओह अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा, घर में चलो ना नाश्ता करके जाना।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, और दूसरी बात तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
1: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा जरूर आऊंगी। अच्छा मैं

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब, आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब हैं, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। अब
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बक्स ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है, वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
5: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
5: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है।
5: रात के 10 बज चुके हैं।
3: डॉक्टर अम्मा,
1: अरे नागमणि तुम, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
3: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
3: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी, मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
5: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
3: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
1: जल्दी चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए डॉक्टरनी, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम

0: इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
1: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
0: क्या कहा?
1: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
0: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
1: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
0: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
1: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
0: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
1: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
0: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
1: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है? कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
2: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहाँ गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप अब शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहाँ से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973 में हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी, उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। अच्छा। मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो।
2: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे।
2: अच्छा।
3: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
2: कोई पैसा नहीं देते थे।
3: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
2: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे।
3: यही काम करते,
2: ये संघर्ष जो,
3: अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
2: हाँ।
3: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा, तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी।
2: अच्छा।
3: तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
2: इतना
3: नहीं
2: पैसा
3: था,
2: मिल जाता
3: इतना
2: था,
3: पैसा मिल जाता था।

0: वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूज़िक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी,
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूबा।
1: महबूबा।

0: माता पिता से बात होती रही क्या, उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी.
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ. वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे.
0: हाँ.
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे. तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है. और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा. मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना. जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहाँ से हम लोग बात कर सकते थे.
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो

0: मिले गए जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई
0: दिक्कत
1: परेशानी
0: नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
1: लगभग
0: रच
1: दो
0: ली
1: ढाई
0: थी?
1: सौ गीत मैंने लिखे थे,
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए
0: गुम,
1: क्या।
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफ़ी समय हो गया है। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का है, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
0: उसमें
1: खुश
0: भी
1: हो
0: एक
1: जाता।
0: ऊर्जा आ जाती थी, एक
1: हाँ लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा।
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहाँ का एक अलग ही चलन था। वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा,
1: अब वो पैसे क्यों
0: कौन
1: नहीं,
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के
1: सकता है,
0: प्रति ना, इस
1: हो सकता
0: दीवानगी
1: है,
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज़्यादा जाते थे क्योंकि
0: जी
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
0: जी
1: को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहाँ पे जाते थे।
0: जी
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए।
0: जी
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
0: जी खैर, ये तो
1: कहीं ना
0: आप
1: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा।
1: उनके जैसा, हो सकता है
0: जी
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
1: जी
0: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि
1: जी
0: आपने उनको अपना उस्ताद माना, हसरत
1: जी जी
0: साहब
1: जी,
0: को।
1: जी बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
1: जी
0: है ना
1: जी
0: सुधाकर जी? तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी ज़िंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
0: जी
1: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफ़ी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
1: जी।
0: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया या

0: इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान
1: देखिए,
0: तो नहीं होता इतने बड़े
1: बहुत
0: लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफ़र में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया। वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी।
0: अच्छा,
1: लेकिन मैं चूंकि उनका फ़ैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
0: मिल
1: गए।
0: गए।
1: वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा
1: वो कहते थे, ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था, मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
0: अच्छा
1: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा। तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया। तो बोले कि तुम कल आओ, तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा। तो उन्होंने कहा, बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा, जी वो क्या होता है? बोले, कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
0: अरे वाह।
1: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
0: अच्छा।
1: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
0: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
1: वो तो
0: शानदार और लेजेंड से थे
1: उनका
0: वो
1: तो
0: तो।
1: क्या कहना
0: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी।
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: जी।
0: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा। बहुत बहुत। और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी।
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी।
0: विजय त्यागी।
1: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया। और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफ़ी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे।
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी हैं, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे। तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पर। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज़ का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
0: अरे क्या बात है।
1: और उसी में उन्होंने की।
0: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
1: नहीं
0: था?
1: मेरे गाने थे उसमें।
0: हुँ.
1: मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था।
0: हुँ.
1: और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
0: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा, कौन सा?
1: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओडली।

0: चुनरिया तेरे नाम की।
1: क्या बात है ये गीत तो हर एक के दिलो
0: जी
1: दिमाग में है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
0: इस
1: जाते
0: गीत
1: हैं।
0: ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
1: अच्छा
0: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
1: हाँ
0: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे विपिन भाई रेशमिया,
1: अच्छा
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, दो तीन पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो है ना उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, ओके,
1: हाँ
0: लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फ़र्क था।
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूँ, बस इसी में कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या,
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी जी
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: अब
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी।
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी कि उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मज़ा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि
1: जितने
0: अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बना दी।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला
1: सुंदर
0: है
1: इसमें,
0: और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस फिल्म
1: सबसे
0: का।
1: बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने
0: बहुत
1: उनके
0: बड़ी बात,
1: दिमाग
0: बहुत
1: में डाली,
0: बारीक काम था
1: बहुत
0: ये,
1: बारीक
0: बारीक
1: काम
0: काम था।
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल।
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे
1: देखिए
0: श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहाँ से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, वो जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
0: बहुत खूब
1: ओढ़ली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
1: जी
0: से
1: जी
0: में गवाया,
1: जी
0: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
1: ये
0: कहानी होती है।
1: हाँ ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपर हिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे तो मैं गया, तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना

0: गाना है। तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो।
1: सानू जी।
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं उसमें। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते। उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी हैं। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा।
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था। कई कारण रहे होंगे जो भी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया। मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो गया।
1: खेला जी।
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई। अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहाँ से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो भी। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा।
0: यार क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं। तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं गा
0: सकती।
1: पाएंगी।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फ़ोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा ख़ास है और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती है
1: हैं।
0: सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ फिर, आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फ़ोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज़ आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो
0: दादा
1: लाइन के लिए।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी, मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीज़ें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर,
0: जी
1: भले बाद में उसको पता
0: जी
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा, तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
0: हाँ अच्छा
1: और ये
0: जी
1: गाना कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: खटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए,
2: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ।
1: जी, ये सबसे बड़ी
2: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
2: मैं
1: जी।
2: ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी।
1: अच्छा,
2: और दादी गाएगी भी।
1: अच्छा,
2: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा।
1: हाँ।
2: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
1: सही बात
2: मुझे
1: है।
2: एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूँ कि मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी,
2: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फ़ोन किया,
1: क्या बात है,
2: और उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा,
2: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं, और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं
1: जी,
2: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में? और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा? बोले नहीं दादा नहीं, दादी।
1: जी,
2: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी,
2: यहां तक तो दादी गाती है,
1: हाँ,
2: अब लड़का क्या जवाब दे? दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है।
2: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
1: जी,
2: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
2: हमराज।

0: साड़ी आएगी तो साड़ी आएगी तो लाइफ बन जाएगी, साड़ी आएगी तो लाइफ बन जाएगी।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मोल भाव न कोई नाप तौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है। हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गंवाया है। जितना दिया पास से अपने लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया की भीड़ में मिला है एक हम कदम। तो मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला लें कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में, संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए हम।

0: ये पहली मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें,
1: मिल गए दुनिया में दिन के सहारे।
2: इस दिल का क्या भरोसा, तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है, कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है, हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें, जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ, तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जारी प्रोग्राम तराने नए पुराने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: 100.3 MHz पर ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जो आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। इस दौरान आप सुनेंगे थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल, प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026, उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल और ODOP कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस साल 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दिए जाने का ऐलान किया। श्री शर्मा ने पात्र उद्यमियों को रीको के भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण और सब्सिडी के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। 33 लाख से अधिक एमएसएमई के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
2: मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में, वो आपके सामने है। उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके।
1: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई भी मौजूद रहे। एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह ने प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कामों का सकारात्मक संदेश दिया। राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा। HPCL की ओर से पहले चरण में राज्य भर में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी गई। इसके लिए प्रदेश में 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जहां रिटेल आउटलेट्स के लिए HPCL 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 31 जुलाई तक इस बारे में नई नीति तैयार की जाएगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि परियोजना के तहत सरकारी भूमि HPCL को लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 3-4 महीनों में इसका पानी जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि इस परियोजना में लंबे समय से चली आ रही तकनीकी और अन्य अड़चनों को दूर कर दिया गया है, जिससे इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने बताया कि गर्मियों में पेयजल संकट से राहत के लिए 4 अतिरिक्त जलाशयों को भी मंजूरी दी गई थी। फलसूंड जलाशय में पानी भरना शुरू हो चुका है और बाकी जलाशयों में भी जल्द पानी पहुंचेगा।
3: सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लोजर्स आते हैं और पानी का संकट डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गांव की ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
1: देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य आवागमन स्थलों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएगी। राज्य के टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूं सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स अवश्य रूप से पिलाएं।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए आज कई स्थानों पर आशा सहयोगिनियों और नर्सिंग विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर आज सेशेल्स पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की उत्सुकता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 सालों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे फायदा पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके मेहनताने का ज्यादा हिस्सा मिलेगा और लोगों को सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन कल नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके तहत कुल 269 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर इन व्यवस्थाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून की गतिविधियों की सक्रियता लगातार बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िले अब भी तेज़ गर्मी और उमस के प्रभाव में हैं। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियाँ बनी रहने के आसार जताए हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। आज 27 जिलों में अंधड़ और बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज बांसवाड़ा जिले के कई जगह तेज बरसात हुई। उधर सिरोही जिले की पिंडवाड़ा और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आबूराज में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। उधर बालोतरा और सवाईमाधोपुर में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 29 जून को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बिरला सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी समारोह में शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण शर्मा ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, जल संरक्षण, कृषि, सामाजिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है। आइए जानते हैं जिले के बीते माह की कुछ प्रमुख गतिविधियों के बारे में आज की चिट्ठी में। जिले में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इन दिनों शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। जिले की सभी 10 नगर निकायों में ये शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में मकानों के पट्टे, नामांतरण, विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों का निस्तारण किया जा रहा है। शिविर में लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। जिले में हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जल संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां हुई। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम चूरू के प्रसिद्ध सेठानी के जोहड़े में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर चर्चा की गई। अभियान के दौरान जिले में 3,526 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले में उत्साह का माहौल रहा। जिला स्तरीय समारोह स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जिला स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। आयोजन आयुर्वेद विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उनके जीवन और योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके विचारों और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष चूरू जिले में 1,624 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 177 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह का माहौल है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। जिले में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर, चूरू, बीदासर और सुजानगढ़ क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में कमी आई है। कुछ स्थानों पर हालांकि जलभराव की स्थिति बनी, जिसे प्रशासन ने समय पर नियंत्रित किया। बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज कर दी है। जिले के किसान मूंग, मोठ, ग्वार, चवला और बाजरा की बुआई में जुट गए हैं। कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक लगभग 40% बुवाई हो चुकी है। किसान अब अच्छी मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में 10 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है। इस योजना में 300 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। महिला सुरक्षा और सहायता से जुड़े मामलों में भी जिले में काम किया जा रहा है। सखी केंद्रों में प्राप्त अधिकांश मामलों का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार पुलिस थानों में संचालित महिला सहायता प्रकोष्ठों में प्राप्त मामलों का भी निस्तारण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1,990 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 4,990 परिवारों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। योजना के माध्यम से कई परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। जिले में मुहर्रम का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। चूरू शहर में विभिन्न स्थानों से ताजिए निकाले गए। जुलूस मुख्य बाजारों से होकर गुजरे। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति

0: रेलवे स्टेशन और दूजा आवन जावन री ठोड़ा टाबरा ने पोलियो दवा पिलावेला। राज्य रा टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो कि अभियान रे तहत प्रदेश रा 1 करोड़ बत्ता टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाउन रो लगस राखीजियो है। इस सारू 60,000 पोलियो बूथ बनाई जा है।
1: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स अवश्य रूप से पिलाएं।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ने कामयाब और असरदार बनावन सारू आज कई ठोड़ा आशा सहयोगिनिया और नर्सिंग पड़ेसरा जागरूकता रैली निकाली। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आप रा विचार साझा करेला ओ रेडियो मासिक कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो जायला। साथ ही AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इन रो सीधो प्रसारण वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पछे क्षेत्रीय भाषा में मन की बात कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा माथे आज ससेल्स पुग्या। हवाई अड्डा माथे ससेल्स राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वारो स्वागत करियो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहो कि ससेल्स हिंद महासागर में भारत रो महताऊ समुद्री साझेदार और कनेरो दोस्त है। श्री मोदी दोनों देशों रा लोगों रा फायदा सारू भारत और ससेल्स रा लंबी बगतरा संबंध और सहयोग ने बढ़ावा देवन सारू आस जताई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी ने आवता 2 साल में देश रा 500 शहर और कस्बा ताई बधाई जायला। भारत टैक्सी रा उद्घाटन सत्र में श्री शाह ई पहल ने सहकारी हलका में एक क्रांतिकारी कदम बताया। वना कहो कि भारत टैक्सी रो मकसद चालका ने सीधो फायदो पुगार निष्पक्ष और साफ गोई बंदोबस्त पारदर्शी व्यवस्था बनावनो है। वना कहो के इन ने चालका ने मेहनता नो बत्तो मिलेला और लोगा ने हिफाजती और किफायती यात्रा रो फायदो ही मिल सकेला।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रो 16 जलसो काले नवी दिल्ली में वेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इनरी सदारत करेला। जलसा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों रा स्वास्थ्य मंत्री सांसद और ठवा एहलकार हिस्सो ले वेला। ई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सतत विकास लगस खाद्य और औषधि सुधार और इनो जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं रा मुद्दा माथे बतली वेला। भारतीय सेना री दक्षिण पश्चिम कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह आज राज्यपाल हरिभाव बागड़े ऊ मिलिया। जयपुर माए लोकभवन माए भी ई भीट माए वना राज्यपाल ऊ न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 काले वेला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का न्यू आ परीक्षा ली जायला। इनरे तहत कुल 269 ओहदा सारू कामयाब उम्मीदवार ने चुनिया जायला। इम्तिहान ने कामयाब और सुचारू और साफ गोई संचालन सारू सगली तैयारियां कर दीजी है। परीक्षा केंद्र माथे करिजिया बंदोबस्ता ने करडायू लागू करने रा निर्देश दीजिया है। नैबे मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों प्री मानसून री गतिविधियां री सक्रियता बरोबर बनी उड़ी है। वठई आथोनी राजस्थान रा कुछ जिला अजय करड़ी गर्मी और उमस रा फीट माए है। श्री गंगानगर चूरू बीकानेर बाड़मेर और जैसलमेर माए दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह रियो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन में राज्य रा उत्तर पूर्व और दक्षिणाध हल्का में आंधी बिरखारी गतिविधियां बनी रहने रा आसार जताया है। कई जिला में गरज चमक रे साथ झमाझम बिरखा वह सके है। आज 27 जिला में अंधड़ और बिरखारो येलो अलर्ट बताई जो है। वह 28 जुलाई रा पहला हफ्ता में बिरखारी गतिविधियां में बढ़वारी आस है। ई बीच आज बांसवाड़ा जिला में कई थोड़ा तेज बिरखा भी वठी ने सिरोही जिला रा पिंडवाड़ा और आरएसआर रा हल्का में रिमझिम बिरखा होवणो मौसम सुहावणो बन्योड़ो है। आबू आज में चोखी तादाद में सैलानी पुग्या है। उठी ने बालोतरा और सवाई माधोपुर में करड़ी गर्मी और उमस नो लोग परेशान रिया। भामाशाह सम्मान समारोह 2026 रा राज्य थरो जलसो 29 जून ने जयपुर में वेला। स्कूल शिक्षा महकमा कानियो बिरला सभागार में होने वाला एक कार्यक्रम में भामाशाह और प्रेरकों को सम्मान करो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज महकमा रा निदेशक सीताराम जाट बतायो के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावरी जलसा में भेड़ा वेला। मैं अब आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमी ने भेड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल अनावरण करो। HPCL कानियो 400 करोड़ रुपया रो निवेश करने राज्य में 300 नवा पेट्रोल पंप खोलिया जाएगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टावरा ने पोलियो खुराक पिलाउन रो लगस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माते प्रसारित वेला। नैंड साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
3: हम बोल रहे हैं विविध भारती से, विशेष जयमाला के लिए थोड़ा सा इंतजार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
1: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
3: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
4: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन ने। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध भारती के संग्रहालय से।
1: फौजी भाइयों को नमस्कार। आज मैं जयमाला शुरू करता हूँ आप सबके लिए। मैं जिनके आशीर्वाद से आज आप तक पहुँचा हूँ, मेरे पिताजी कुमार सचिन देव बर्मन। ये गीत जो सिर्फ आप ही के लिए है और उन्हीं की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। सुनिए।

फौजी भाइयों, बड़ा विशाल देश है हमारा। आप जैसे, आप में से कई पहाड़ की चोटियों पे बैठे होंगे और कई रेगिस्तान में, लेकिन जहां मैं हूं

एक गाना अब मैं आपको ऐसा सुनाता हूँ जो मैं दो दफ़ा गा चुका हूँ, शायद आप चौंक गए होंगे। पहली बार बंगाली में, स्वप्नो अमार हारिए गेछे, और दूसरी बार हिंदी में आशा जी के साथ।

अब मैं आप लोगों को एक ऐसी गीत सुनाना चाहता हूँ जो मेरा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इनका गाना बजाएंगे हम। ये गाना देखिए क्या है, मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं उन साथियों में से दो साथी के नाम है वासुदेव चक्रवर्ती और मनोहरी सिंह। ये दोनों मिलके उतना ही लगन से काम करें मेरे साथ जितना मैं मेरे पिताजी कुमार सचिन देव बर्मन के साथ काम करता था। उन्हीं के एक गाना आपको सुनाना चाहता हूँ।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
3: देवदर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
3: देवदर्शन धूप।

0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसे आज प्रस्तुत किया है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन ने।
1: कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं सिर्फ पाश्चात्य संगीत को ज्यादा अपनाता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिला मैंने शास्त्रीय संगीत को भी अपनाया।

अब मैं आप लोगों को गीत सुनाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है शोले। इसमें दो आदमी ने गाया हुआ है जिनका नाम हम लोग किशोरदा बोलते हैं और मन्नादा बोलते हैं। इन दोनों में तसल्लुन हो रहा था कि दोनों कैसे एक दूसरे से बेटर गाएं। इसके बारे में एक ही बात बोल सकता हूँ कि दोस्त सिर्फ दोस्त होता है, बाकी सब कुछ आनंद बख्शी का, धुन मेरी।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आनंदपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिमवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: और गायक राहुल देव बर्मन ने
3: अब आपको और एक फिल्म की गीत सुनाता हूँ। फिल्म का नाम है धर्म करम। इस गीत को 3 महान कलाकारों ने गाया है। आवाजें आपकी जानी पहचानी और लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

फौजी भाइयों, और ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, और एक गाने के लिए वक्त रहा है। अब जो गीत मैं सुनाऊंगा, ये गीत फिल्म शोले का है।

तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन ने।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अनमोल

0: आप हैं विविध भारती के संग
1: जिज्ञासा।
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जर्मनी फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन भी गई और उसके बाद वो दूसरे नंबर पर भी सरक गई। ऐसा होता है खेल का जादू। और आज जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ब्राजील वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम है। आगे क्या होता है ये तो वर्ल्ड कप के खत्म होने पर ही पता चलेगा, पर फिलहाल आपको ये बताएं कि कुरासाओ नाम के देश पर 7-1 से जीत करने के बाद जर्मनी के कुल वर्ल्ड कप फुटबॉल में 239 गोल हो गए थे जबकि ब्राजील के थे 238 गोल। 14 जून 2026 को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में कुरासाओ को 7-1 से हरा कर जर्मनी बन गई फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम और उसके वर्ल्ड कप में कुल गोल हो गए 239 जबकि ब्राजील 238 गोलों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया। लेकिन इसके बाद ब्राजील की भी बारी आई। वैसे आपको बता दें कि मैच से पहले जर्मनी ब्राजील से 6 गोल से पीछे था लेकिन कुरासाओ के इस मैच में 7 गोल जर्मनी ने दागे और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जबकि समझा ये जा रहा था कि थोड़ा वक्त लगने वाला है जर्मनी को। इस मुकाबले में हेवर्ड्स ने 2 गोल किए जबकि पूरी जर्मन टीम ने शानदार आक्रामक प्रदर्शन दिखाया। जर्मनी 113 मैचों में 239 गोल के साथ टॉप पर पहुंच गई। जर्मनी ने 5 बार ब्राजील को पीछे छोड़ा लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्राजील ने फिर से अपना जादू दिखाया और फीफा वर्ल्ड कप में वो 241 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है। अब आपको बता दें कि ब्राजील 241 गोल के साथ पहले नंबर पर है, जर्मनी 239 गोल के साथ दूसरे नंबर पर है और अर्जेंटीना 138 गोल के साथ तीसरे नंबर पर है। 21 जून की सुबह जब मॉन्टेरी स्टेडियम में जापान और ट्यूनिशिया के बीच शुरुआती सीटी बजी तो वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना के लगभग एक सदी बाद खेले जाने वाला 1000वां मैच था, यानी फीफा वर्ल्ड कप ने अपने इतिहास का 1000वां मैच पूरा कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े खेल के आयोजन की 96 साल की यात्रा और 1000वां मैच। आपको बता दें 1930 में उरुग्वे से शुरू हुआ था फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप एक बहुत ही साधारण से स्टेडियम से और आज 2026 में उत्तर अमेरिका के सबसे ज्यादा मॉडर्न लकडक स्टेडियमों में मैच खेले जा रहे हैं और फीफा का जो इतिहास है वो रोमांच से भरा है। विश्व कप

ला मेक्सिको से हुआ था। 100वां मैच 1954 में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था, जबकि तीसरे स्थान के प्लेऑफ में ऑस्ट्रिया ने उरुग्वे को 3-1 से हराया था। 12 साल बाद 200वां मैच सबसे यादगार फाइनल बन गया था। सन 1966, जगह वेम्बले इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय के बाद पश्चिमी जर्मनी को 4-2 से हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। अब बारी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के 400वें मैच की। 1986 में डियोगो मैराडोना ने 400वें मैच में अर्जेंटीना की विजयी शुरुआत की थी। 1986 का मेक्सिको विश्व कप सबसे यादगार विश्व कप में से एक बन गया था, जिसमें हैंड ऑफ गॉड नाम का एक ऐतिहासिक गोल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखिए, हैंड ऑफ गॉड गोल। और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी शानदार एकल दौड़ भी इसी वर्ल्ड कप में हुई थी। अगर ये भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए कि किस तरह से मैदान के आर पार भागते हुए मैराडोना गोल करते हैं। और फिर 1994 में मैराडोना 500वें मैच में खेले और एक दुखद अध्याय जुड़ गया, क्योंकि अर्जेंटीना के इस बेमिसाल खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट हुआ, वो नाकाम हुआ और उन्हें टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया गया। 2026 का वर्ल्ड कप अभी आधा ही हुआ है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में गोल की 2 हैट्रिक हो चुकी हैं। लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की अल्जीरिया पर 3-0 की जीत में हैट्रिक बनाई और जोनाथन डेविड ने कनाडा की कतर पर 6-0 से शानदार जीत में हैट्रिक बनाई। एक वर्ल्ड कप, अब तक 2 हैट्रिक, जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतिहास में कुल मिलाकर फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में 56 हैट्रिक बनाई गई हैं, जिनमें से हर एक हैट्रिक की अपनी एक कहानी है। अगर इन सब के बारे में बात करने लगे तो एक पूरी सीरीज ही शुरू करनी पड़ेगी। जून 1954, मैच के शुरू होने के 24 मिनट बाद स्ट्राइकर एरिक प्रोब्स्ट ने चौथे, 21वें और 24वें मिनट में हैट्रिक बनाया। ऑस्ट्रियाई टीम को ग्रुप चरण में चेकोस्लोवाकिया पर 5-0 से शिकस्त देने में मदद की। इससे पहले अर्नस्ट स्टोजास्पल ने तीसरे मिनट में ऑस्ट्रिया को बढ़त दिलाई थी। एरिक प्रोब्स्ट की यह हैट्रिक वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज हैट्रिक बनी हुई है। 24, 21 और चौथे मिनट में गोल किए थे। हालांकि तीनों गोलों के बीच के समय को ध्यान रखें तो यह सबसे तेज हैट्रिक नहीं है। यह रिकॉर्ड हंगरी के खिलाड़ी लाज्लो किस के नाम है, जिन्होंने 1982 के वर्ल्ड कप में एल साल्वाडोर के खिलाफ सिर्फ 7:42 में खटाखट 3 गोल दाग दिए थे। और अब सबसे छोटे और सबसे बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड आपको बताते हैं। आज तक पहले वर्ल्ड कप में हैट्रिक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 24 जून 1958 को जब ब्राजील ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 5-2 से हराया था, तब उनकी उम्र थी सिर्फ 17 साल 244 दिन। पहले 18 साल की आयु से पहले हैट्रिक बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं आज तक। पहले के विपरीत लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में हैट्रिक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 2026 यानी इसी साल वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच में मेसी ने 3 गोल करके अर्जेंटीना को अल्जीरिया पर 3-0 से जीत दिलाने में मदद की थी। इस समय उनकी उम्र थी 38 साल और 357 दिन। विश्व कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक बनाने वाले खिलाड़ियों की बात अब कर ली जाए। आज तक विश्व कप में एक से अधिक हैट्रिक बनाने वाले केवल 3 खिलाड़ी हैं। ये हैं फ्रांस के जस्ट फॉन्टेन, 1958 में पश्चिमी जर्मनी के खिलाफ 4 गोल, पराग्वे के खिलाफ हैट्रिक। हंगरी के सैंडोर कॉक्सिक्स, 1954 दक्षिणी कोरिया के खिलाफ 9-0 की जीत में पहली हैट्रिक और जर्मनी के खिलाफ 8-3 की जीत में 4 गोल। और जर्मनी के गर्ड मुलर, 1970 बल्गारिया और पेरू के खिलाफ हैट्रिक। कितनी रोमांचक है रिकॉर्ड की ये बातें। अगर हम 2 अलग अलग विश्व कप की बात करें तो गैब्रियल बैटुस्टा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा हैट्रिक बनाई हैं। अर्जेंटीना के इस स्ट्राइकर ने 1994 वर्ल्ड कप में ग्रीस के खिलाफ 3 गोल किए और फिर 4 साल बाद 1998 में फ्रांस में हुए टूर्नामेंट में जमैका के खिलाफ एक और हैट्रिक बनाई। और अब फाइनल में हैट्रिक की बात। 1996 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की और जॉफ हर्स्ट फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले वर्ल्ड कप इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। वेम्बले स्टेडियम में उनकी हैट्रिक ने इंग्लैंड को पश्चिमी जर्मनी के खिलाफ
4-2 से जीत दिलाने में मदद की थी। 2022 में चमत्कार फिर से दोहराया गया। फाइनल में किलियन एम्बापे ने

फ्रांसीसी टीम के लिए 3 गोल किए, हालांकि फ्रांस को खिताब जीतने के लिए ये काफी नहीं था। लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 से ड्रॉ रहे मैच को पेनल्टी शूट आउट तक पहुंचाया और आखिरकार दक्षिण अमेरिकी टीम ने पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से जीत हासिल की। तो ये था वर्ल्ड कप फुटबॉल का बुखार। वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में कुछ रोचक तथ्य हमने आपको बताया और आइए अब अपनी प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ लौट आते हैं और आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप को हैक करने से बचाने के लिए किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। व्हाट्सएप को आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप आसानी से हैक हो सकता है। ऐसे में व्हाट्सएप को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि व्हाट्सएप को हैक होने से बचाने के लिए हमेशा 6-डिजिट SMS वेरिफिकेशन कोड या कोई अन्य OTP किसी के साथ साझा न करें। आपको अपने WhatsApp में हमेशा 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लेना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर लिंक्ड डिवाइसेस की चेकिंग भी कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और बातें आपको बताते हैं। अपने WhatsApp खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, इसे किसी से भी साझा न करें। जैसे कि हमने आपको बताया 2-स्टेप वेरिफिकेशन, आप WhatsApp की सेटिंग में जाएं, अकाउंट में जाएं, 2-स्टेप वेरिफिकेशन को चालू करें और इस तरह से ये एक लेयर बढ़ जाएगी सिक्योरिटी की। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने फोन में आपका व्हाट्सएप चालू नहीं कर पाएगा। यदि कोई आपसे आपका 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड मांगता है तो वो आपका दोस्त हो, परिचित हो, आपको ये कतई नहीं देना है। आपको व्हाट्सएप में जाना है और चेक करना है लिंक्ड डिवाइसेस, जहां वो बताएगा कि आपका व्हाट्सएप कहां कहां कंप्यूटर पर लॉग इन है। सभी जगह से आपको लॉग आउट करके रखना चाहिए। इसके अलावा संदिग्ध लिंक से बचें, बहुत जरूरी बात है। किसी भी अनजान नंबर से मैसेज आया है, कई बार वो लिंक हो सकती है, कई बार वो तस्वीर हो सकती है। हाल ही में एक शख्स को किसी शादी का कार्ड आया, उसने वो क्लिक किया और उसका व्हाट्सएप हैक हो गया। ये कार्ड किसी अनजान नंबर से आया था। दूसरी बात, बायोमेट्रिक लॉक सेट करें। व्हाट्सएप को सुरक्षित रखने के लिए आप फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने फोन में और कंप्यूटर में व्हाट्सएप का बैकअप रखें, जैसे कि हम अपने ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप का बैकअप सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका खाता हैक हो जाए तो आप अपने डेटा को इस तरह से वापस ला सकते हैं। किसी भी तरह की मुसीबत की स्थिति आए तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस ना कर पाने की स्थिति में support@whatsapp.com पर मेल करके अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 30 दिनों तक अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं करते हैं तो अपने आप आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और अब हम याद कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को, जिनकी याद का दिन होता है 27 जून को। फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को ब्रिटिश भारत के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता हॉर्मुस जी मानेकशॉ पारसी थे और पेशे से एक डॉक्टर थे। माँ का नाम था हीरेबाई मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ के पिता चाहते थे कि वो मेडिकल की पढ़ाई करें, लेकिन सैम का मन था कि वो आर्मी में जाएं और उन्होंने भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया। उनकी पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी। 1932 में वो फौज में आ गए। 1934 में फौज में स्नातक हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा के युद्ध क्षेत्र में जापानी सेना के खिलाफ उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया था। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। गोरखा और भारतीय सेना के जवान उन्हें हमेशा प्यार से सैम बहादुर कहा करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो तमिल लोगों के इसलिए प्रिय हो गए क्योंकि नीलगिरीज में उन्होंने अपना घर बना लिया था। 1968 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे सैम मानेकशॉ। और आपको बता दें कि 1971 का जो भारत पाक युद्ध था, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को 100% विक्ट्री का वादा किया था और उसे निभाया भी था। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ गहरी नींद में सो गए, हम सब से बिछड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र थी 94 बरस। सैम मानेकशॉ पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सैम बहादुर। इस गाने के जरिए हम सैम बहादुर को नमन करते हैं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। मिलेंगे अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ। शोध आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं, उसने जवाब दिया। तो मैंने कहा, तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। मुझे भोजन में

0: कुछ स्वाद न मिला। वो भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है। और बीच वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। दो भद्र पुरुष थे, पांच बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चल दिए। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। दोनों सज्जनों ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं। ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चलाया होता। अब की बार मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी इसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला दिए। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो 2 कलाराज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तोड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था किला। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चौंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहन मेज पर डटते थे, यहां पांव धोना आवश्यक था। सेवक पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, सेवक ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए, सेवक ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे। मगर वहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। नौकरों का एक जत्था हमेशा घिरे रहता। अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफी है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई पर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सिलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी इधर लगा हुआ था पर लैंप नदारित। दैवयोग उसी वक्त मुंशी रियासत अलिया निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहां सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही सुराज आएगा अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दो, लेकिन यह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह ना थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिल गई। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा, अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है? ये सभी बातें वहां लोग कहते रहे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन मा घुसन तो पावत नहीं, उस पर इत्ता मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से, आवाज़ें सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज़ श्रेया घोषाल की थी, गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवीश्री प्रसाद का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: समय एक छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: एक नई खुशी। जे डी एल आई है भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बुरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, बसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुल ओरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969 6 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR

0: अब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ

0: अर्थ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के

0: मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म धड़क से। आवाज़ें अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ए जेंटलमैन से। आवाज़ें ऐश किंग और जिगर सरैया की थी। गीत के बोल रफ्तार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, संगीत सचिन जिगर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज़ अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से, आवाज़ एआर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत एआर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस डी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। 1 साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुने पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

0: एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।
1: यादों

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

ने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

ठीक इसी तरह से बॉनजोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आइए सुने छाया गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: दिल में रोशन इश्क तेरा, उफ, चिराग पे चिराग रख दिए हैं तुमने
2: आपके हसीन।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती, वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू। दिल भी खाली खाली है बहुत, तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्षा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुअन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की कसक।

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आँखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज़मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आँखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आँखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूँ, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

FM 100.3 MHz पर आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: ரத்ன பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं. हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है. श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया. विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है. साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है. इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है. एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा. इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की. प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं. अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा. नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे. ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी. कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा. हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा. अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया. जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं. अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा. निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है. फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा. एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा. दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे. इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया. ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: 107.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। आपसे अगली भेंट कल सुबह 5:53 पर होगी। शुभ रात्रि। जय हिंद।